0: आप समझते हैं जो आप करते हैं कोई देखता नहीं? दीवारों के भी आंखें और कान हैं। आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि लोग आप पर उंगली उठाए।
1: जाने
0: दो दिन की आई हुई औरत से इतना प्यार हो गया है आपको, और जो औरत 5 साल से आपके साथ है उसका ख्याल कभी नहीं आया।
2: मैं प्रेम प्रेम कुछ नहीं जानती, ऐसे किसी रास्ते चलते के हाथ में हाथ दे दिया और कल को बात हो गई तो।
3: सुनिया, आज कितनी देर के बाद ये रात आई है।
1: क्या कपूर साहब का मर्डर हो गया?